प्रेरणा नै सेवा गरुछन्ती। उत्कलर मौडमणि वीरश्री गजपति गौडेश्वर नवकटी कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर प्रभु केते परम दयालु प्रभु मध्य आशीर्वाद करंतु उत्कलर गजपति चलंती विष्णु को सदा सर्वदा तांकर जीवन कुसुमित होई उठु जगतर जी कल्याण निमन्ते प्रभु निकटरे निजकु समर्पण करि दैछन्ती। से गोटिए परे गोटिए जो कार्य चालुथिला प्रथमे आसिले शुक्ल जो राजनीति बंदापना आउ छेरा पहरा रा जो कार्य चालुछि दुई गोटी पज्यारे कार्य प्रथमे शुक्ल पुष्प को सिंचन कले आउ ओळेई नेले गजपति महाराज तापरे चंदन गुंड वर्तमान सिंचन करुछन्ती जल सिंचन करुछन्ती विजय कहाळी बाजुछि आउ सेवा कार्य रे तांकु जो सहयोग करुछन्ती आजरे यात्रार सुंदर दिव्य भावरे भंडार मेकअप दयनामाळी घटुआरी कराबड़ सेवक मुदुली सेवक राजगुरु काहलिया तड़ाऊकरण देउलकरण राजज्योतिष मध्य रही छेरापहरा कार्य प्रभु निकट में निजक समर्पण कर प्रभु नौ।

0: ଧନ ଅର୍ପଣ ସେବା ଫଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
1: ନମସ୍କାର। ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ବୈଷ୍ଣବୀ। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल कप्तान

0: केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछो विशेष वंदना कार्यक्रम।
2: अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम।

0: वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय विश्वासाय निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीय मंत्री परिषदः धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षण प्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी नूतन शिक्षा मंत्री भविष्यति। वर्तमान दायित्वेन सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतद् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमन्त्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 26-2000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार। आकाशवाणी कटक सुनंतु आज प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ।

0: ଶେଷ ହେଲା ଶିଶୁ ସଂସାର।
1: ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970 ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ? ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
2: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
3: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ଼ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है, और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया, तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं, उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
5: GST काउंसिल बीमा उपरे लागू हेबाकु थिबा 18% टैक्स को ह्रास करी 0% कर दिया जायछि। एहा फलरे जीवन बीमा करिबाकु थिले एबे केवल इंश्योरेंस रो प्रीमियम ही देबाकु हेबो, एवं एहा उपरे कोनोसी अतिरिक्त टैक्स देबाकु पड़िबो नाही। जेउ माने स्वास्थ्य बीमा करिबाकु चाहुचंती तांको पई बहुत लाभप्रद हेबो, काहेकि ना आगरु LIC को रियायत मिलिथिला, आउ एबे GST हटि जिबा कारणरु बीमा करुथिबा लोकंक पई एहा बहुत फलप्रद हेबो।
0: श्रोतामाने कार्यक्रम शुणुछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्रर। कार्यक्रम प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जुगे। एही प्रसारण DTH एवं लाइव स्ट्रीमिंग आप जुगे मध्य प्रचारित। समय सकाळ 8:00 हेबाक जाउछि। परवर्ती कार्यक्रम रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्लीरु।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है।

0: आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
4: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता

0: प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्वाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning.

श्री जगन्नाथंकर पर्वपर्वाणी जानी यात्रा आउ ओसा बार सेवा पूजा वेशभूषा रीतिनीति और भोग राग सहित प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में उत्कलीय सामाजिक परंपरार निविड़ संपर्क प्रतिष्ठित एहि परंपरा सिद्ध सामाजिक चलणीर प्रवर्तन और प्रतिपालन करि एहार मर्यादा महात्म्य वैशिष्ट्य और तात्पर्य परिवर्तन करि स्मरणीय करि रखिबा हेउछि जगन्नाथ संस्कृतिर श्रेष्ठत्व।

0: ଦେଖିନବା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଥୀ ଆମ ପାଖରେ
1: ପୁଣି ଫୋନ କଲରେ।
0: हेलो मो पसंद
2: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार कौन बोल रहे?
2: मैडम लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: लोकेंद्र वर्मा जी कैसे हैं आप?
2: बस मैडम जी अच्छे हैं बिल्कुल मस्त है। महाकालेश्वर जी की नगरी है उज्जैन, ज्योतिर्लिंग पर्यटन स्थल भी है मैडम।
0: हाँ हम जानते हैं प्रभु की कृपा है आप प्रभु के पास है।
2: जी जी मैडम बिल्कुल।
0: आप कितने बार जा चुके हैं महाकालेश्वर?
2: मैडम बचपन से ही हैं उज्जैन शहर में रहे हैं तो हम तो कई बार दर्शन करने के लिए जा चुके हैं।
0: बहुत भाग्यवान है आप।
2: बिल्कुल मैडम जी ये तो भाग्य है कि हम उज्जैन में ही।
0: हाँ कृपा है बिल्कुल कृपा है और आपके पर ऐसे ही कृपा बनी रहे प्रभु की।
2: बिल्कुल मैडम जी ये तो कृपा सभी देशवासियों पर भी बनी रहे। बहुत अच्छा लगता है हमें जब बाहर से तीर्थयात्री उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते हैं, सभी देश के कोने कोने से भी दर्शनार्थी आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शहर के अंदर इतने भाग्यवान हैं हम के इतने दूर दूर से महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और कभी जो त्योहार रहता है जैसे सोमती अमावस रहती है या शिवरात्रि रहती है तब ये बहुत से तीर्थयात्री उज्जैन में आते हैं ना, तो यहाँ के जो धर्म प्रेमी जनता है वह भी उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
2: उनके खान पान की व्यवस्था पानी पीने की व्यवस्था ये सभी चीजें वो रखते हैं।
0: आपने आपके शहर के बारे में और उज्जैन के बारे में प्रभु महाकालेश्वर के बारे में इतना कुछ बताया बहुत धन्यवाद। सब श्रोता सुन रहे होंगे तो आप तो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले भी एक बार नहीं दो तीन बार बात हुई थी शायद।
2: जी मैडम आज काफी दिनों के बाद में मेरा फोन लगा है।
0: हाँ जी
2: प्रयास तो खूब किया मैंने पर आज लग गया।
0: बहुत अच्छा। आप बता दीजिए क्या करते हैं आप?
2: मैडम मैं हेयर कटिंग सैलून का काम है मेरा, मतलब संवारने का काम है, लोगों को तैयार करने का काम है मेरा।
0: संवारने का काम है, बहुत अच्छी तरह से आप पेश किए हैं आपके काम, लोगों को संवारने के काम है।
2: जी मैडम बिल्कुल बिल्कुल मैडम।
0: ऐसे ही सवारते रहिए, सबकी मुंह में हंसी देते रहिए।
2: जी जी मैडम।
0: आपके घर में कौन कौन है?
2: मैडम जी घर में माता जी है, मेरी माता जी की उम्र 85 ईयर है, पिताजी नहीं है और वाइफ है, साथ में दो बच्चे हैं और बहू भी है साथ में। माता जी अब तो ज्यादा उम्र हो गई है, 85 ईयर से ज्यादा है, पर उनका सभी देखरेख करते हैं घर में क्योंकि बुजुर्गों की सेवा तो करना ही चाहिए, उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। और मेरा तो मानना ऐसा है कि सारे तीर्थ करने के लिए भले मत जाओ आप दर्शन करने के लिए, घर में आपने अगर माता पिता और अपने बुजुर्ग जितने भी हैं उनकी अगर सेवा आपने कही है तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है।
0: बिल्कुल सही बात बताया आपने। तो आप खुद कितने समय देते हैं माता जी के लिए?
2: मैडम जी मैं 4 घंटे सवेरे देता हूँ, 4 घंटे रात के समय में, जब जैसे बुजुर्ग है रात को सो नहीं पाते हैं तो जब तक नींद नहीं आ जाती जब तक मैं भी जगता रहता हूँ सो

0: नहीं पाता हूँ, तो फिर मैं मेरे दुकान पर आ जाता हूँ काम के लिए।
1: थोड़ा तकलीफ हो रहा है?
0: हाँ, सभी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है। और आज की पीढ़ी को भी, मतलब अगर अपने आने वाले बच्चे भी इस चीज
1: आपसे सीखेंगे,
0: संस्कार मिलेंगे।
1: संस्कार तो जरूर मिलेगा, आपके घर में ऐसे ही आप कर रहे हैं तो आपके बच्चों को भी संस्कार मिलेगा, और ये तो सभी के लिए जरूरी है। एक दिन तो सभी का ये स्थिति आएगा।
0: बिल्कुल मैडम जी, ये संस्कार बहुत जरूरी है, और आने वाली पीढ़ी को भी देखना चाहिए कि अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करें और उनका लाभ लें, क्योंकि बुजुर्ग का सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से मन खुश रहता है। जैसे माता पिता अपना कैसा बचपन में अपना ध्यान रखते हैं, वैसा ही ध्यान अब हमें उनकी अवस्था में रखना पड़ता है।
1: ठीक है, आप माता जी का ध्यान रखिए, खुद की भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका भी रेस्ट लेना जरूरी है।
0: तो बिल्कुल,
1: हाँ, घर में आपके बच्चे हैं, दो बच्चे हैं और पत्नी है।
0: दोनों बच्चे, मतलब बेटी है मेरी तो वो IT सेक्टर में काम करती है, ये इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर का, और बेटा है तो प्राइवेट जो गारमेंट्स का काम करता है, वो खुद का बिजनेस है उसका।
1: बहुत अच्छा, काम पर लग गए हैं सब।
0: जी बिल्कुल,
1: घर में सुख शांति बनी रहे और आप सब कुशल मंगल रहे। बता दीजिए क्या गाना सुनना चाहते हैं आज मोहपसंद से?
0: गाना मोहपसंद में सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शोर और गीत के बोल है, गाना लाइन है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा।
1: आपकी आवाज से थोड़ा हो जाए।
0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तो पानी।
1: वाह, बढ़िया गाया है आपने, धन्यवाद। सुना देते हैं ये सुंदर सा गाना खास आपके लिए।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, मो पसंद है।
1: हाँ, मैं मेटर्निटी स्टेट गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम से रमेश पत्र आपसे बात कर रहा हूँ।
0: रमेश पत्र कहते आसाम रु। नमस्कार, आपण केबे आगरु कथा हेतिले हम संगरे?
1: ना ना, हुई नहीं, पहला दफा लगा।
0: हाँ, प्रथम थर पई आपण हम संगरे कनेक्ट हेचंते। आमे आपण को स्वागत जणौचु मो पसंद को।
1: हाँ,
0: आ केमिति अछंती आपण?
1: मु तो भले अछो।
0: भल रे अछंती?
1: भले भले। आपणंकर खबर?
0: आमे भी भल रे अछु। आपण आसाम रे अछंती किंतु आपण ओडिया की?
1: हाँ, मो ओडिया।
0: अच्छा,
1: हम लोग आसाम में रहकर आसामिया हो गया।
0: हाँ, तथापि ओडिया और आसाम भाषा पाखा पाखी बुझी हुए।
1: पाखा पाखी समझ सकता हूँ पर बोल नहीं सकता।
0: हाँ, कोई बात नहीं, आपण बुझी पारुछन्ते सेटा बड़ कथा।
1: बुझी पाए।
0: केते वर्ष हला आसाम रे रहिलेनी?
1: मोर तो जन्म से आसाम रे हम अजा माने पापा माने 6 साल हो गया।
0: अच्छा, बापा को घर कोठी? बापा जेजेबापा को घर ओडिशा रे कोठी?
1: ओडिशा रे केंद्र जिला रे थिला।
0: केंद्र जिला रे?
1: हाँ हाँ, अभी तो रिश्ता खत्म हो गया उधर का।
0: कौन करुछंती आसाम रे?
1: आसाम रे मु तो एक शिक्षक थी और रिटायर।
0: आपना रिटायर कर लेनी?
1: रिटायर कर थी, एतिया रिटायर होई छी।
0: एबे कौन करुछंती रिटायर हला परे?
1: घरे थाकन दे ट्यूशन रिजन परंतु।
0: घरे आपन कर सब किए के अछंती?
1: घरे पिला अछि, बहु अछि, पोती भी अछि।
0: पो बहु नातुनी सब होई गेलनी?
1: हां, नाती नातनी सब अछि।
0: अच्छा, आउ आपनकर धर्म पत्नी?
1: धर्म पत्नी अच्छी घर।
0: नाम डा कौन?
1: नाम था रुनु पात्र।
0: कितने बच्चे हैं आपका?
1: 3 बच्चे हैं, तीनों बेटा है, तीनों भी ब्याह, 3 बच्चे और 3 नातिनी भी, 3 है नातनी भी।
0: अच्छा, ओडिशा के बे आसंती नी बोधे?
1: ओडिशा तो जुआ ना है।
0: के बे आसंतु ओडिशा? आपण करो निज जागा आगरु रहुतिले, के बे आसंतु श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करंतु।
1: महाप्रभु को मंदिर जीवा को प्लान एकटा करा है थी।
0: भल कथा। पुओ माने सब कोन करुचंदी?
1: पुला माने एक कॉलेज में है, एक पुला एक स्कूल में है और एक घर में रहता है।
0: नौकरी करते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: नौकरी करते हैं
0: एक स्कूल में, एक कॉलेज में। भलरे रहंतु, सेमिति खुशी रे रहंतु। आपण टीचरशिप करुथिले, रिटायर करले, पुनी ट्यूशन करुछंती। आउ आपणकर कौन शौक अछि?
1: शौक रिटायर हेबा परे गान सुना।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଗେ ଗୃହୀତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
1: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती अदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नीलमाधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
2: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक from late Shri Neel Madhav Sinha. Subsequently, she underwent a rigorous training in khayal and tappa singing under the eminent exponent of the Gwalior Gharana,

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक का आमोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक का आमोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा.
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी.
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति. उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर. इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है. इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया.
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी. शी वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर. दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashwani Delhi. Namaskar.
2: ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଗେ ଗୃହୀତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ.
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है. ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है. लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं. ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है. अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था. योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं. उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया. उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया. ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा. रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है. और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं.
4: जदि आपण एबे कौनसी नूतन कार किंबा बाइक किणिबा योजना करुछंती एहा आपणको एबे बहुत सुलभ मूल्यरे उपलब्ध हेबो. जीएसटी परिषद छोट कार 350 सीसी रो बाइक एवं तीनि चकिया जान उपरे टैक्स 28% रो ह्रास करी 18% करि दैछंती. सेप्टेम्बर 22 तारीख 2025 ठारु लागू हेबाकु थिबा एही पूजा उपहार एंट्री लेवल गाड़ीगुड़ी आहुरी सस्ता करिदेव, किंतु लग्जरी कार एवं बड़ बाइक 40% नुआ स्लाब्रे आसिजिबो, तथापि एसबु उपरे कम टैक्स लागिबो.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट्स साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने हैं, खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ

पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चितूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में

संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है।

आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए
बड़ी चुनौती बना

हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हद

करघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई

बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को

0: को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ବୋଧନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ବୋଧନର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର।
4: ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ନମସ୍କାର। ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ କିଛି ତାରିଖ ଥାଏ ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆଜି ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ତାରିଖ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ। ଏହି ଦିନଟି ଆମକୁ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଆମକୁ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। କାର୍ଗିଲର ସୁଉଚ୍ଚ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ, ଶତ୍ରୁର ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାରତମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଆଜି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୀର ଶହୀଦ ଏବଂ ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଭାରତ କେବଳ ନିଜ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 14 ଜୁଲାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଦ୍ରାସର କାର୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ୱାନ୍ ରାଇଡ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ କେବେ ହେଲେ ପାଶୋରୀ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଭାରତ ନିଜର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସାହସ ସହ ନିଜର ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଚାଲିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାରତରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 75%ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଚଳିତ ମାସ DRDO पिना का

किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

स्वप्न सागर कथाचित्र एक गीतटी को गाई अक्षय कुमार महांती एवं अनुराधा पोडवाल तेरे शुणापी इच्छा प्रकाश कर एसएमएस करेनापुर जाजपुर अरुण कुमार बेहरा एवं झरणा बेहरा।

0: ମଞ୍ଜୁଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
2: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
2: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा

0: क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मन रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पाई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: लोकगीत क्रमरी सुनंतु धुडुकी गीत परिवेषण करिसेंती नवकिशोर महाराणा एवं साथी

0: ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସଫଳତା ଉପରେ କଲେ ଆଲୋକପାତ। ଦେଶବାସୀ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟର 27ତମ ବାର୍ଷିକୀ। ଜମ୍ମୁ ମୂଳ ଶିବିରରୁ ଅମରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ 19ତମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ତିନିଟିକିଆ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଆଜି ହରାରେଠାରେ ଖେଳାଯିବ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to countries scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who have been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said, every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
2: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स

0: इस के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom craft and further strengthen the spirit of being vocal for local.
0: हथ करगे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
0: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदे।
1: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defence of the motherland. In a social media post, President Murmu said the unparalleled valour, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at the cenotaph and paid tributes to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay. Addressing the gathering, Mr. Rajnath Singh said, the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valour of Indian soldiers. More from our correspondent.
2: यूनियन

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था।

0: हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा

उचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण

0: नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652773414 है और यूक्रेन में +38093355958 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर चार भारतीय सवार थे, इनमें से दो भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने यह खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे किछि समय परी।

0: मैं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कहिछन्ति गत 14 तारिखरे दिल्लीर जातीय युद्ध स्मारकीरू बाहरिथिबा मोटरसाइकल राली द्रासर कारगिल युद्ध स्मारकीरे पहुंचिबो। गोटिए यात्रा गोटिए राष्ट्र गोटिए सलाम एही प्रसंगरे मोटरसाइकल राली आयोजित होइछि। प्रधानमंत्री कहिछन्ति गत दशंधिरे देशर प्रतिरक्षा उत्पादन रप्तानी तथा विभिन्न राष्ट्र सहित राजनैतिक सहयोग नूतन शिखरें पहुंच पारिछि। एही अवसरें प्रधानमंत्री भारतीय नौसेनारे आईएनएस महेन्द्रगिरिर सामिल डीआरडीओ पक्षर् उषा और पिनाक दूरगामी क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण देशर वैज्ञानिक और इंजीनियर सामूहिक कार्यर प्रतिफलन बोली प्रधानमंत्री क्याच द रेन अभियान संपर्क में आलोकपात करी वर्षार प्रत्येक बुंदा संरक्षण करने अभियान को एक जन आंदोलन में परिणत करा उचित। जल उत्सगुड़िकर पुनरुद्धार वर्षा जल अमल भूतल जलभंडार वृद्धि और चारा रोपण उपर श्री मोदी गुरुत्व प्रदान करने सहित जल उत्सर संरक्षण में भुवनेश्वर सफलता को प्रशंसा कर
0: भेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाए। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी ले पानी की हर बूंद बचाएं।
1: क्रीड़ा क्षेत्र में भारतीय खेलाड़ियों उत्कृष्ट प्रदर्शन उपरे प्रधानमंत्री आलोकपात करने जापान ओपन बैडमिंटन टाइटल हासिल करिबारे पीवी सिंधु हे प्रथम भारतीय। से भारतीय महिला क्रिकेट दल ने लॉर्ड्स स्टेडियम प्रथम टेस्ट विजय उपरे श्री मोदी वर्णना कर प्रधानमंत्री महाकाश क्षेत्र में घरोई उद्योगर सफलता को उच्च प्रशंसा कर विक्रम एक सफल परीक्षण देशर युव उद्भावकों प्रेरणा और चेष्टार निदर्शन। विज्ञान ओलंपियाड्रे विभिन्न वर्ग में श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर छात्र छात्री देशपाई गौरव आनी श्री मोदी उल्लेख कर परिवेश प्रदूषण उपरे आलोकपात करि प्रधानमंत्री कहिछन्ति प्लास्टिक जनित प्रदूषण एबे बड़ आह्वान सृष्टि करिछि। प्लास्टिक पुनःचक्रण माध्यम रे आवर्जनार सदुपयोग करा जाय विभिन्न सामग्री प्रस्तुत करा जाउछि। प्रधानमंत्री कहिछन्ति आसंता मास 7 तारीख रे जातीय हस्तंत दिवस पालन करा जिवो। बुणाकार तथा हस्तंत कारीगरक दक्षता एवं सृजनशीलता को सम्मान प्रदर्शन स्वरूप लोकल फॉर वोकल भावना को अधिक सुदृढ़ करबाको श्री मोदी आह्वान दे गत 12 वर्ष मध्यरे हस्तंत सामग्रीर विक्रय 6 गुण वृद्धि पाई प्राय 8000 कोटी टंकारे पहुंचिछि। आगामी पर्वपर्वाणी में खदी हस्तंत एवं हस्तशिल्पर प्रस्तुत उत्पाद क्रय करने को श्री मोदी समस्त आह्वान देते।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: हर घर त्रिरंगा अभियान उपरे आलोकपात करी श्री मोदी कहिछन्ति एहा देश को एकत्रित करिछि। अगस्त 15 पूर्वरु माई गव पोर्टाल रे निजस्व चिंताधारा एवं परामर्श को पठाइबाकु श्री मोदी देशवासीको अनुरोध करिछन्ति। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। समग्र देशरे आज 27तम कारगिल विजय दिवस पालन करा जाउछि। 1999 मसियारे 84 दिनर युद्धरे सारा विश्व देखिथिला भारतीय सेनार शौर्य एवं पराक्रम। पाकिस्तान विपक्षरे ऑपरेशन विजय माध्यमरे भारतर बड़ सफलताकु मने पकाइबा सहित शहीद जवानक प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करिबा हेउछि आजिर दिवसर मुख्य उद्देश्य। वीर जवानको बलिदान जोगु कारगिलर टाइगर शृंगरे त्रिरंगा उड़ाई भारतीय सेना विजय हासिल करिथिले। कारगिल विजय दिवस अवसर में कृतज्ञ राष्ट्र वीर शहीदमानंको श्रद्धांजलि जणाउछि। चलित वर्ष मुख्य कार्यक्रम लद्दाखर द्रासस्थित कारगिल युद्ध स्मारकीठारे आयोजित होइछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे भारतीय सशस्त्र बाहिनीर शहीद वीर जवानमानंको श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। राष्ट्रपति कहिछन्ति मातृभूमिर सुरक्षा पई प्राणबळी देइथिबा वीर योद्धामानंको अद्वितीय पराक्रम अटल संकल्प एवं अनन्य राष्ट्रभक्ति भारतीय सेनार गौरवमय परम्परार अतुलनीय उदाहरण। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आपटे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आपटे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है, बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते हैं, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवे दिन मैं स्टेज पे गया। ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई, हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोसना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का स्टेज पे आया, वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: हाँ, मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोसना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो माँ ने एक साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, जो आनंद लोकनाट्य करके है, वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, कि माँ को साथ देना चाहिए। तो मेरी बड़ी बहन अनिता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने के, और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर भीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी चौथी यत्ता हो गई है।
2: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना, आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
3: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का, तो मैंने बड़ा होके मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा मगर बाप के तरीके नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
2: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
3: बहुत भारी, तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहता, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होनी थी, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होनी थी, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होनी थी, नवनाथ महाराज की स्टोरी होनी थी, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आई चकाली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
2: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक गाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा वो कैसा है?
3: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे, पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा

0: जुवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो वो दौर बहुत अच्छा था।
1: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए, वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
0: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायरी के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाशा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखाया है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे न होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
1: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
0: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणु कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
1: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे?
0: हाँ।
1: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है और ये दौर ही इन सभी चीजों का है, और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाशा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाशा देखते हैं।
1: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
0: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है, जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
1: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
0: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अभी इंस्ट्रूमेंट बटन से ये बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
1: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो हाँ। इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
0: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाशे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाशा सुन रहे हैं। मेरा तमाशा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियोज निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
1: रघुवीर जी, आपकी इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकान

0: से पीछे मुड़ के देखते हैं जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
1: बहुत बेहतरीन रही है
0: रघुवीर जी। तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
1: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंग पे पूरा बदन ढका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
0: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
1: नहीं नहीं बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाचे वाले उनको भी पूछा, ये अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है? तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाचा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाचा देख रहे हैं। इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
0: रघुवीर जी आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
1: होता है।
0: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाचा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाचा भी बदल चुका है, पूरा तमाचा बदला हुआ है, तमाचे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, ऐसा रोजगार तमाचे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते है और अपना नाम भी बहुत कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाचे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाचे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगता है।
0: रघुवीर जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: People's Padma on Akashvani।

0: राहुल रो बैंक अकाउंट तो अच्छे तो रास्ता क्लियर बैंक रो आवश्यक अनुजाई स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजिली मिलिब जेउथिरे 4 लाख टंका पर्यंत नो कोलैटरल
1: आ सीए कोठी
0: मीठा आरबीआई कहे
2: कर सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
4: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटीनाड सीमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटीनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ चेटीनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: कस्टमर केयर तरफ रु फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हे जिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
7: ठीक लागुनी स्कैम भी हे पारे।

0: साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखन्तु SBI सचेतन रहन्तु सुरक्षित रहन्तु।
1: अच्छा दास बाबू आपणक घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: रे मेघ तु सुनी जा तो दिग तु भांगी जा प्रिया अछि दूरदेशी जीवु चाली तापासी मो खबर देवता को जाने जा। ए सुंदर गीत टी गई बाबुल सुप्रियो एवं शुणापाई इच्छा प्रकाश करी एसएमएस करी जगतपुर रूपाली।

0: ରାତି 7ଟାରେ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणु चलित अधिवेशन कार्यक्रम संपर्क सूचना गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 90तम भाग संध्या 6:10 ओडिया आलबम गीत संध्या 6:30 राति 17:02 ओडिया कथाचित्र गीत जिला हालचाल शुणे देवगढ़ जिला संपर्क राति 17:25 आकाशवाणी कृषि शिक्षा राति 17:30 विषय लुणा जंगल परिचालना विशेषज्ञ केदार कुमार स्वईं मन की बात शीर्षक भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य उद्बोधन ओडिया भाषातर प्रचार करू राति 8:00 समाचार दर्पण राति 8:30 अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियोस्कोप रिले कर प्रचार करू आकाशवाणी दिल्ली राति 9:30 राति 10:00 प्रचार करू नाटक श्री नील माधव रचना शरत चंद्र मूलिया प्रयोजना रमापद नंद कार्यक्रम सूचना वंदना प्रचार करू 6:05 अनुचिता 6:35 श्रीमद भागवतर 108तम भाग 6:40 7:10 आमर स्वास्थ्य शुणे बढ़ुवा अपराध प्रवणता मानसिक रोग कि आलोचना करेंगे सुश्री संगीता बेहरा प्रभात परिक्रमा 6:25 कथिका 6:35।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

0: लापावधौ एतद् उक्तवान्। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रस्य अतुल्य पराक्रमिणः शौर्य पुरुषान् ससंभ्रमं सस्मार। तेन उद्घोषितं यत् भारतम् अद्य निरन्तरं नूतनान् उच्च शिखरान् आरोहति, तद्यथा सैन्य उत्पादने, सैन्य निर्याते अथवा मित्र राष्ट्रैः सह राजनैतिक सहयोगे भवतु। आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिनः संबोधयन् श्रीमोदी आह यत् अद्य जुलाई मासस्य 26 दिनांको वर्तते, यो हि सा तिथिः यस्याः संस्मरणाय कस्यापि पञ्चाङ्गस्य आवश्यकता नैव वर्तते, यतो हि अद्य सम्पूर्णे राष्ट्रे कारगिल विजय दिवसः परिपाल्यते।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: श्री मोदी न्यगादीत यद् भारतम् अश्रान्तम् स्वकीयस्य प्राविधिक सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं विदधाति। तेन भारतीय नौसेनायां आईएनएस महेन्द्रगिरी इति पोतस्य नूतन प्रवेशः विशेषतः श्लाघितः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् गत रविवासरे विक्रम 1 इति उपग्रह प्रक्षेपकस्य सफल प्रक्षेपणानन्तरं प्रत्येकं भारतीयः गौरव गौरवेण परिपूर्णो वर्तते। कैच द रेन इति वर्षा जल संग्रहः अभियानमधिकृत्य भाषमाणः श्रीमोदी सहर्षम् अब्रवीत् यत् जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांकात् आरभ्य अशेषे हि देशे विशिष्टमेकं राष्ट्रव्यापी अभियानम् अविरतम प्रचलति।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: अद्य मन की बात इति मनोगतम कार्यक्रमे प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कतिपय दिवसेभ्यः पूर्वं ग्लास्को नगरे प्रारब्धासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु सहभागिनं प्रति एकं क्रीडकं प्रति एकः भारतीयः जयघोषं करोति। अनेनैव सह तेन विज्ञान ओलंपियाड स्पर्धानां उल्लेखो विहितः, यत्र विपुला संख्यानां छात्राणां सहभागिता भवति। अस्मिन् संस्करणे प्रधानमन्त्रिणा कश्मीरस्य पारम्परिक वागु कटस्य चर्चा अपि कृता। श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् देशः सम्प्रति लोकल फॉर वोकल, स्थानीय वस्तूनां प्रोत्साहनम् इति मन्त्रेण सह अग्रेसरति। गणेशोत्सवावसरे पीओपी निर्मित प्रतिमानां स्थाने स्वदेशी मृत्तिका निर्मितानां गणेश प्रतिमानामेव अर्चनं विधातुं तेन पुनरपि आह्वानं कृतम्। अवधेयं च यत् श्वः जुलाई मासस्य 27 दिनांके भारत रत्न विभूषितस्य डॉ एपीजे अब्दुल कलामस्य पुण्यतिथिः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभिहितं यत् डॉ कलामस्य व्यक्तित्वे बहवः प्रेरणादायिनः पक्षाः समाहिताः आसन्, तथापि शिक्षकस्य भूमिका तस्य हृदयस्य निभृत समीपे आसीत्। सम्बोधनस्य समापने अगस्त मासस्य 15 दिनांके आचरणीयस्य स्वातन्त्र्य दिवसस्य चर्चां कुर्वन् तेन सर्वेभ्यः स्वकीयाः नूतनाः विचाराः परामर्शाश्च माई गव मञ्चे प्रेषयितुं साग्रहं प्रार्थितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनवत्युत्तर नवदशतमे वर्षे संवृते कारगिल समरे मातृभूमेः संरक्षणाय वीरगतिं गतानां भारतीय सैनिकानां अतुल्य वीर

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: मोर जने जिदिया पड़ोसी अछि पूरा कॉलोनी सोलर पैनल लगे सारेणि किंतु से मानिबाकु प्रस्तुत नथिले सतरे बिजुली बिल जीरो आसी पारे मु कहली पुओ ना हेउछि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना तापरे जण जण करी समस्तंकर बिजुली बिल जीरो आसीबाकु लागिला तापरे कहले एबे लगेबाकु ही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पई पंजीकृत करंतु pmsuryaghar.gov.in।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: अपन मने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र रो।
3: आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण।

0: उनका शौर्य देखा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों की वीरता का ऐसा इतिहास रचा था जो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य के बारे में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी और यूएसए में भारत के एम्बेसडर रहे नरेश चंद्रा जी से यूएस आर्म फोर्सेस के एक जनरल ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स मैरिन्स भी शायद वह नहीं कर पाते जो भारत के जवानों ने कारगिल में करके दिखाया। उस जनरल ने कहा था कि गोलियों के बौछार के बीच पहाड़ पर चढ़ते जाना, अपने सामने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखना, फिर भी बिना रुके शिखर पर पहुंचकर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ना, ऐसा असाधारण शौर्य केवल भारतीय सैनिक ही दिखा सकता है। उस अमेरिकी जनरल ने आगे कहा था कि कोई आम आदमी समझ भी नहीं सकता है कि कारगिल में भारतीय जवानों ने क्या कर दिखाया था। 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां तापमान रात को -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो, जहां साधारण इंसान का जीवित रहना ही अपने आप में एक चुनौती है, और उसके ऊपर एक और चुनौती थी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, यानी दुश्मन ऊपर और बंकरों में सुरक्षित बैठा हुआ था और हमारे जवानों को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर उनकी गोलियों की बौछार का सामना करते हुए नीचे से ऊपर की ओर उन्हें आक्रमण करना था। मिलिट्री साइंस की हर किताब में यह एक असंभव सा ऑपरेशन था, लेकिन हमारे जवानों के शौर्य के सामने हर किताबी ज्ञान छोटा पड़ गया। साथियों, और हमारी इस विजय का मूल्य हमारे 500 से अधिक वीर सपूत ने अपना अनमोल जीवन देकर चुकाया है। उनकी संख्या उस समय 546 है कि उस दौर में जब हमारे बलिदानियों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए उनके गांव और शहरों में पहुंच रहे थे, तो उस समय जो करुणा और गौरव का मिला जुला भाव भरा था वो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता। आज भी हमारी माताएं अपने बच्चों को जब वीरता की कहानियां सुनाती हैं तो उनकी कहानियों में कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और इन जैसे न जाने कितने वीरों का जिक्र होता है। हमने इन वीरों को अपनी धरोहर बनाकर रखा है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इनके शौर्य से प्रेरणा सदैव लेती रहेंगे। यही कारण है कि कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक सामान्य दिवस भर नहीं है, यह हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा का दिन है जो व्यक्तिगत सफलता और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच का अंतर समझना चाहता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सर्विस का भाव ही किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हुआ करता है। इन तमाम विविधताओं के बावजूद इन बलिदानियों का खून एक ही रंग का, और यह खून इसी एक मिट्टी में गिरा है। जो लोग इस देश को तोड़ने के सपने देखते हैं, उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुःस्वप्नों का एक जवाब है। हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों के सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा।
1: कारगिल विजय दिवस हमको स्मरण कराए देशर सीमा सुरक्षित रहिले ही आमर स्वाधीनता और गणतंत्र सुरक्षित रहिबो। आसंतु एई पवित्र अवसर रे आमे समस्ते कारगिल अमर वीरमानंकु श्रद्धार सह स्मरण करिबा, देशर एकता अखंडता एवं सार्वभौमत्वर सुरक्षा पाई सचेतन रहिबार संकल्प नेबा। अमर शहीद मानंकु आमर विनम्र श्रद्धांजलि।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत

0: के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
1: आज सुबह चार्ज दिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी।

0: उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event, and Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system, and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
3: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है.
4: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन. आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री. वी हैड कंटिन्यूअस मीटिंग टुडे. दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी. आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स. इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली.
3: बहुत बड़े डिपार्टमेंट है इसलिए पूरा

0: ललिता
1: ललिता
0: कौन सर
1: ए गाध पेड़ी चंचल सर पानी नहीं गले रोसे आज तोर कौन है झरणा पानी उठे मोटे कौन मन करू ना

0: ए पानी जितिक शीतल सेतिक मधुर भगवान तुम मंगल करंतु।
1: हाउ हाउ भगवान केबे जे मंगल करिवे एबे पिंडा उपर मृग चले पारि देछि आपण बसंतु आज आपण आम घरे कुणिया
0: कुणिया तुम घरे ना ना
1: काई की गरीब घरे कुणिया हबा को पसंद करंती नै ना
0: ना ना से कथा नै ललिता मो भाबुतिले कोन की
1: कोन कोसे
0: कथा कोन की मु विदेशी पुणी अपरिचित एकुटिया थिबा कोनसी रमणी घरे।
1: ओ घरे की पुरुष नथिबार कुणिया हबा को डरी जाउचेंती ना ना ना आदो डरंतु नै होसे मो सबर राजा विश्वबसुंगर कन्या बापू माने गले एक खिन फेरथिबा
2: ए ललिता
1: हे
2: हालो मा ललिता
1: ए तो बापू आसलेनी
2: के आसछि के मा हे सकाळ सकाळ ए गरीब कुडिया रे ब्राह्मण गोसेंकर पाद पडिछि हमर तो बड़ भाग्य ए दंडवत गोसे दंडवत
0: अरे अरे ये कोन करछ सबर राजा जेते

0: ललिता, अरे मा ललिता।
1: कौन बापू?
0: ये विद्यापति गोसाई देखा जाऊ ना जे?
1: सी तो आसिले दिन खाली बण पहाड़ झरणा बुली देखुचंदी जाइथिबे सेय अरे
0: मु कोन कहुथिली के मा ये गोसाईटी केमिति काम होनिस
1: जेमिति पंडित सेम डरकुला
0: डरकुला आलु तू केमिति जानलु
1: कौन हैले बापू कौन है से कथा सुनिले ना हसी हसी तो पेट दरे जे जीवा
0: आलो कहो कहलु कहलु देखी कोन
1: ओहो बापू तू आके बसिले सिना कहिबे सुन ए चट्ट पर दउची एठी ब
0: हो हो बसिले
1: जानिलु बापू काली बेळो बुडे गोसई के सांगरे नै जाइथिले झरो कुळ को पहाड़ ऊपर सेई जो सरु झरटा तळु को गडी आछे सेईति तांको ठिया करी मु बाहरली कळसे नै पानी आनिबा को
0: अच्छा तापरे
1: तापरे तापरे ना तापरे ना।

0: ना ना ललिता मत एकुटी छाड़ी तुम जाओ नहीं मत भारी भय लगुच
1: राज्य दूत हो पुणी भय क्या भय
0: पहाड़ ए जंगल आउ तमें सब हाथ रे धनु तीर
1: आउ कहको
0: आउ कहको पाखो को आसले सिना कहबे
1: काहे कि सेठी कोउ ना
0: पाखो को आसले तम कान रे चुप चुप कहबे आस पाखो को आस
1: नाही गो नाही
0: काहे कि
1: तमे कोन जानी ना कि गोसे आम कुल रे अजना अचिना मनीष पाखो तिल्ला माने जीवा को मन्ना मु केमती जीवि जे
0: सतरे मु ताले अचिना अजना ना आउ मते जे इतदिन जे तम घर के खाइ को देल स्नेह आदर देखल केते केते भल कथा कहल ठीक अछि मु जाऊ छी
1: ए गोसई जाओ नी तेने के मोटे जाओ नी भारी जंगल तीखा पहाड़ पहाड़ तले बाघ छकी बसतिबो मो कथा मान मान गोसई जाओ नी जाओ नी बुझिलु ना बापू जेमती से बाघ गर्जन शुणी ना चानियार पूरे एका बेलिक तलु खसी पड़े
2: अरे किसी क्षति है नहीं तो
1: ना मो बापू मुरा से पाखे पहुंच सारी आगे सांगे हाथ को धरी पक उपर को उठे आने से कथा मन पड़ला ना बापू मो छाती खाली पूरा कण
2: अच्छा अच्छा अच्छा प्रभु नीलमाधव अपार करुणा माँ गोसाईकर किसी अनिष्ट है जाए प्रभु पूजा टा सारी दी आसे हाँ शुण संज बेल कड़े जीवन टी गोसाई की बारण करू हाँ मुझे
1: बापू बापू
2: बापू
1: बोली से मते कौन कहले जानो
2: कौन
1: कहले कहले कहले ठाकुर जी तमरे हाथ को मो हाथ रे चिरा दिन पई छांदी दियंते
2: विद्यापति एक कथा कहले प्रभु प्रभु नीलमाधव मो ढाक तेबे तेबे शुणी छ प्रभु
0: किए कहाटा को शुणी छबर राजा।

0: सोई पड़ले ना कौन?
1: ना, निद होनी।
0: तम इच्छा पूर्ण करने को बापू तो राजी है, आउ पुणी कौन भावुचो जे?
1: भावुची जड़े सन्देह आ अविश्वासी लोक पर नीलमाधव को दर्शन न करवा बर मो पक्षे भल हम एकुटिया जाए तांकु जत बले मनोपुरी देखि परिबि नहीं
0: छी तमकु मोरेणा तमे बापू कथा को मट्टे धरिबो नहीं नीलमाधव तांको प्राणठु भली अधिक प्रिय मु तम कथा दउ छी नीलमाधव को तमे जेमिति एकुटिया जाए दर्शन करि परिबो मु तर उपाय करिबि
1: उपाय कि उपाय करिबो
0: तमे खाली नीलकंदर को गला परे अंटिरे किछि सोरिस बांधि नै जिवो आ बापू अजनतरे कौशल करि से सोरिस को बाट जाक बुनी बुनी जिवो किसी दिन पर से बुणा सोरसर गच्छ गच्छ दिबो आ से गच्छ को चिन्ह चिन्ह तमे एकुटिया जे नीलकंदर पहुंचि परिबो
1: वाह वाह चमत्कार उपाय तुम्हारे बुद्धि को मु प्रशंसा न कर रही पर नुरिता तमे तमे तो प्रकृति रे बुद्धिमती आ चतुरी
0: ताहले मो कथा मानि एथर को सुन्ना पिलाटी परि सोई पड़
1: बेस राजा विश्वव सुनंदिनी रानी ललितांकर आदेश मम शिरोधार्य

0: महाराज
1: कुहराणी
0: विद्यापति तो एपर्यंत काही फेरले नाही तांका यात्रा पथरे कोणसी विघ्न घटी नाही ताऊ
1: ना ना सेपरी काही की भाऊ चराणी से जतेबेले देवकांचे रे जाईछंती तुमे देखिबो से निश्चय कृतकार्य ही फेरिबे
2: अवंती महाराजंकर जय हो
1: के
2: विद्यापति तुमे आसीछ विद्यापति
0: नीला माधवकर संधान तुमे पाइलो विद्यापति
1: कह विद्यापति उत्कल तुमे की संवाद नहीं फेरिछ
3: संवाद अति शुभ महाराज
0: शुभ
3: देखी आसिली निघंच अरण्य नीलकंदर रे विश्वभूषु नाम जन सबर राजा नीलमाधव को बणर फलमूल खुआई पूजा करपूर्व से शोभा महावट वृक्ष तले सुशोभित बेदी उपरे प्रभु नीलमाधव चतुर्धा मूर्ति हो पूजा पाउछन्ति
1: विद्यापति
3: कर्पूर चंदन बास रे सारा अरण्य महकी उठुची माधव से हस हस श्रीमुख शोभार पटातर ना महाराज से दृश्य मन पड़े देह रोमांच जात हो महाराज से शोभा अपूर्व अपूर्व शोभा महाराज
1: धन्य तुम्हें विद्यापति तुम्हें धन्य प्रभु को तुम्हें स्वचक्षुर दर्शन करी कोटि तीर्थ दर्शन पुण्य अर्जन करिछ तुम्हें धन्य विद्यापति तुम्हें धन्य
0: विलंब करनी महाराज प्रभु नीलमाधव को ससम्मान अणई।

0: कौन करिबी किछि मते उपाय देखा जाहु नाही रानी
1: सुनिथिली उत्कल शिल्पी माने क्वाडे मूर्ति गढिबार भे सिद्ध हस्त अथच से माने आजि निहाळ मुगुर भांगी बसछथि आजि उत्कल तेबे कोन शिल्पी शून्य
2: हे कहे उत्कल शिल्पी शून्य मा समग्र भारत बर्षे कला यार उत्कृष्ट बोली ये राज्यर नाम होची उत्कल आपण अनुमति देले दारुल मूर्ति मो गढ़ी दे
1: तुम्हें तुम्हें गढ़ी देव किए तुम्हें वृद्धा
3: ललित चर्म कोटारगत चक्षु थर थर हस्तपद शक्तिहीन शरीर अथच तुम्हें कहुच मूर्ति गढ़ी देव
2: गढ़ी देवी महाराज
1: तुम्हें कौन आगुरु कौटी के मूर्ति गढ़ी थी शिल्पी
3: तुम घर क्यों थे शिल्पी और तुम परिचय
2: घर आम द्वारकार महाराज कर्मस्थल उत्कल मु नंद महाराणा सान पुओ मो ना केशव महाराणा कहीं कहीं मत कन्हे महाराणा भी डाकती ये भंगा घोड़ा व्यवसाय मुंड बाला आसी झोट हलानी महाराज हौ मत एथरक टे दारू पाखक नहीं चलत महिमा
3: हौ तेबे आस मो साथ

0: महाराज महाराज महाराज
1: कौन है ची? कौन है ची रानी गुंडीचा? तुम्हें खुद विव्रत जाना पड़ते जे कथा कौन
0: से बुढ़ा बुढ़े गंभीरा भीतर रही बार आज की 14 दिन हो गला हेले मूर्ति गढ़ा व्यवहार शब्द किछि तो जाना पड़ू ने तीवल कबट रे कान पारी सुनिली किछि भी सुना जाऊ नहीं
1: मत भी तो आश्चर्य लगुच राणी एक दिन पूर्ण होगा आहरी सात दिन बाकी से बढ़ईर सत कथ भाव
0: बेलूर दुर्बल शरीर कथा भाविला बेलू मो मन कहीं पाप छुची स्वामी शेष को आम पुण्य अर्जन करने परे नरहत्या पाप भागी हम ना तो
1: ना मुंतु निरुपाय राणी निरुपाय बुढ़ा महाराण सत्य ना ना असंभव मुं पारिबिनी राणी मुं पारिबिनी
0: ताहले गंभीरा द्वार खोलिबा को आदेश मु दउछि
1: ना ना ना राणी ना एक कथा

0: ने करो ना।
1: जाओ रखी, आगे से पाला ना करो।
0: रानी
1: जाओ तुम्हें।
0: रानी
1: रखी
0: ना, रानी
1: रखी
0: सुन
1: जा, तुम्हें
0: सुन जा रानी, सुन जा रानी, सुन जा रानी, अब जगो ना, सुन जा।

0: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरूषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज बंदन कंठशिल्पी माने थिले निमाई चरण हरिचंदन स्वागतिका महापात्र आलोक कुमार कुंडू दीप्तिमयी महांती बंदिता दास विभुदेन्द्र दास एवं अक्षय कुमार महांती गीत रचना करिथिले शशिभूषण बेहरा मिश्र सत्यनारायण सालबेग एवं नंदकिशोर सिंह।

0: जय जगन्नाथंकर जय भारत रामचंद्र रवंकर जय जगन्नाथंकर जय भारत रामचंद्र रवंकर
1: प्रणाम घेरंत छाऊ
2: तुम्हें छत्रोदर घाटी छाड़ी एठी कहीं की बक्सी नीरव कहीं की तमें ये कौन कल बक्सी छत्रोदर घाटी को बिना युद्ध रे मालूद फौज हाथ रे छाड़ी दिया चिलो एबे पछाड़ टीका कोल फौजदार संगरे 20,000 सैन्य धरी माड़ी आसुची ए प्रचंड मोगल बाहन को तमें आउ आगोली पारिबो तो मो प्रश्नर उत्तर दियो बक्सी नीरव कहीं की
1: ए पाखे टीका कोल फौज से पाखरे मालूद्र सैन्य छत्रद्वार घाटी दुई पटर आक्रमण से आम बंची था छामु
2: तमें कौन पूर्व एत सब सुपरिकल्पित योजना को भूलीगल बक्सी घाटी उत्तर पटे जो कमाण मान थिला चिलिका कूल घाटी उपर को उठा बेले मालुद्र सब सैन्य से निपात हो जाते घाटी पछआड़े चिलिका कूले कूले बाणुआ पाइक मान जगी रही तेणु मालुद सैन्य मान छत्रद्वार घाटी सीमा आदौ मारी पार नथांदे
1: कौन सी चिंता करंतु नहीं छामु राजपुर ठारु चिकाकोल सैन्य मानक आम हटाई पारिबा आम पछरे पुणी रही चंती गंजागढ़ कृपा सिंधु मान सिंह
2: कृपा सिंधु मान सिंह अवश्य गंजागढ़ अतीत दक्षिण आड़ बहु आक्रमण को प्रतिहत कर कृपा सिंधु मान सिंह इच्छा कले हुए तो अक्लेश चिकाकोल सैन्य मान को ऋषिकल्यार अपर पार्श्व अटकई पारे अच्छा देखा जाओ
1: सब ठीक है जीव छामु कृपा सिंधु मान सिंह या मध्य निश्चय प्रस्तुत हो जाए
2: बेस तमें ऋषिकल्यार उत्तर कूल को फौज पठाओ बक्सी मु आगरे चलि गंजागढ़
1: यथाज्ञा छामु मु अविलंबे ऋषिकल्यार उत्तर कूल को सैन्य चालना करु
3: कौन बक्सी एवं छाउणी उठ पाइक बाइन ऋषिकल्यार उत्तर कूल को आगे
1: मत हसाइल देवानी बक्सी वेणु भ्रमर बर राय दुग्ध पोष्य शिशु नुहे जे एत बड़ भूल कर बस
3: गजपति आदेश
1: गजपति निजे रही
3: मान कृपा सिंधु मान सिंह परा तुम भिणई से कौन मोगल मान को बाधा देवे गजपति को साज्य करें
1: गंजागढ़ दुर्गे एवं श्वेत पता उड़ मोगल मान शत्रु नुहे बंधु बोली घोषणा करुले
3: तमें गजपति को जानी शुणी हाणम को पठेदेल ना
1: तने।

0: बंदा कोई है?
1: आदाब जहां पन्ना।
0: जाओ खोरथा का बादशाह को ले आओ।
1: जो हुकुम खुदा बन।
0: और सुनो, शराब पेश करो।
1: जी हजूर।
0: आइए आइए आइए अमर बिरादर खोरथर राजा, आइए तशरीफ रखिए।
2: रामचंद्र देव एठारे जड़े कैदी नायब नाजिम को बिरादर हबार तार से सौभाग्य कौटी हब
0: हेबो हेबो सौभाग्य हेबो। खोरथर बादशाह को एवं कैदी करने को कहार हिम्मत अच्छे? खुदार दुनिया रे नसीब गर्दिश लागी रही। अभी तक कली तक मुर्शिदाबाद नवाब सुजा खान को बेटी हमारा बहन रिजिया को आप निका हेबे अमर बिरादर बोली जीवे।
2: नायब नाजिम
0: नवाब सुजा खां अजी बंग बिहार ओडिशा सुबार मालिक तंकर नेक नजर खोरथा पुरी आज जाहिर रही। खोरथा कटक भितरी बहु जंग लगे दुई पटे केते खून खराबी होई से खोरथार नुकसान बेस। आज आमर इच्छा से जंग आ खून खराबी बंद हो। खोरथा कटक आ मुर्शिदाबाद रे बिरादरी आसु ओडिशा मुलक रे अमन जारी हो।
2: मु हिंदू आपण माने मुसलमान धर्मर भिन्नता मध्य रे ये विवाह संभव नुहे।
0: आपण मुसलमान बनी जीवे रामचंद्र देवरु आपण हाफिज कादर।
2: हाफिज कादर?
0: हाँ हाफिज कादर ही आपण कलमा पढ़ीबे बहन रिजिया आपण को शादी है जीवो।
2: किंतु
0: आपण भाभी देखंतु अभी जल्दी जल्दी ये शादी काम सारी दबा।

0: बंद है।
1: जी हजूर।
0: शराब पेश करो।
1: जी हजूर।
0: और थकु खबर जाई छे कहे हाफिज कादा और किंबा खोजा के ही आसिले नहीं
2: जाहपना खोर्धा राजा कटक आसवार संभावना मते जणा जाउ नै।

0: हे जगन्नाथ, तुमरी सुरक्षा पाई मु सब किछि करि पारे। एबे तकि खां पाखरे अभिनय करी बेणु भ्रमरवर को उचित दंड देवा को हबो। मोते मोते सहाय हुओ प्रभु, मोते सहाय हुओ।
1: खोर्धा राजा हाफिज खादर खोर्धागढ़ छड़ी पड़ाई जाइछे। खोर्धागढ़ सुनसान बोली खबर पाई आमे खोर्धा को रमाना हेलु नाही। हेले तीन दिन हेला हाफिज खादर जिंदा वा मुर्ता के ही थोरी आनी पारिले नाही। सब सब देखो सब कंपकत।
2: मुगल लश्कर माने गांव गंडा बण जंगल बुली बुली हालिया हेलेन। हेले हाफिज खादर रो टेर मिलु नाही।
3: आदाब जहांपना।
1: की खबर बंदा?
3: जहां पना को भेटो पाई खोद खोर्धा राजा हाफिज खादर गड़रासी पहुंचती।
1: कौन? हाफिज खादर?
3: हाँ जहां पना।
1: आसो बिरादर, आसो हाफिज खादर।
0: मु मुजरिम, मु अपराधी, तथापि मोर बिरादर मोर बड़ भाई भाबे जहां पना को आलिंगन करुचे। जहां पना के ठरे मु ढेर कसूर कर छे। मोर गुस्सा के माफ करंतु नहीं जापना। मते मते दंड दियंतु। हाँ हाँ, मते फांसी दियंतु। हाय रिजिया बेगम, फांसी खुंटरे चढ़ीबा पूर्वरु आगे तम सहित मुलाकात चाहे पार्ला नहीं।
1: हाफिज खादर,
0: आउ विलंब कहीं की हजूर। ए मु हाफिज खादर, आपन को भाई बिरादर जापना। आपन को दरबार रे हाजर अच्छी जापना। निज हाथ रे तलवार चोटरे ये मुजरिम रो मुंडा को छिड़े दियंतु। मु बेअदब, मु मुजरिम, मु कसूर करची।
1: होश में आओ हाफिज खादर, होश में आओ।
0: होश कौन बेहोश कौन? जापना कर जाने शुद्धा दुश्मन तिबा पर्यंत हाफिज खादर कदापि होश रे रही पारिबो नाही।
1: दुश्मन तो तुम्हें हाफिज खादर, सही तमोर मुसीबत। पीर मुजाहिद गाजी खां को कतल कला की?
0: इंशाल्लाह, पीर मुजाहिद गाजी खां को कुर्बानी रे जने शहीद पड़िला सीना। शैतान जने बिल्कुल को मिला नहीं।
1: टीका कोल फौजदार ठरो पेशकेश टंका लोटे जीवार जिम्मेदारी कहारो? ये सब खुनी रहा जानी रे तुम्हें हाफिज खादर सालिस नथिले। ईद पर्व रे कटक नसी खोर थरे लुची रही थन तो कहीं के
0: तो बात खोल।

0: साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखन्तु एसबीआई सचेतन रहन्तु सुरक्षित रहन्तु कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
1: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे।

जयति जगन्नाथं तारणं कारणं च जय दुखी दुख हारि दान बारि मुकुन्दं जय सलिल जनेत्रं देवकी नंदनाय जय जय विधुनित्यं पाद पद्मे नमामि गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्करे तथा भिर्न भिर्न नकर्तव्यं पंच देव नमस्तुते झंकड़े तु सदा वासी सिंह वाहिनी सारोदे मम कंठे निवासाय वाक्य देवी नमस्तुते जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे परम ब्रह्म निराकार शून्य देहि गुरु अलेख।